0: No explosions, no larger than life heroes, just emotions that feel deeply personal. And that's exactly why Musafir Cafe has become social media's latest obsession. Here's why this tender love story is striking a chord with audiences everywhere.
1: Look, I meet every Musafir for some reason. For a little while, for some life.
2: Some stories don't end when the credits roll. They quietly move into your heart.
3: वो वाली energy.
4: वो energy मतलब?
3: जैसे कोई virgin लड़का पहली बार किसी लड़की को घर लाया.
2: That's exactly what Musafir Cafe has done.
4: Lawyer है यहाँ.
3: जी.
5: Objection, milord.
3: Milord नहीं होता.
5: Sustained.
2: It isn't breaking the internet with shocking twists or larger than life moments.
3: मन्ने को कम जीते हो क्या?
6: थोड़ा पास आइए ना मैडम.
3: जैसे लोग थोड़ी देर से मिलते हैं
4: और तुम जैसे ज्यादा देर रुकते नहीं.
2: Instead, it's making people pause, revisit old memories.
7: मोहब्बत का अजीब ही तरीका होता है, वो फिर से लौट आती है किसी नए रूप में, किसी नई मुस्कुराहट के साथ.
2: Text the one person they could not forget and wonder what if.
3: दो लोगों को अलग अलग लाइफ स्टेजेस में प्यार नहीं कर सकते.
2: In an age of endless scrolling and instant gratification, this tender, slow-burn romance has now become social media's newest emotional obsession.

0: What exactly is fasting? कुछ लोग उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ लोग उसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज उसे ओमैट बोलते हैं, वन मील अ डे।
1: डीजल और इथेनॉल वाले पेट्रोल के जमाने में इलेक्ट्रिक व्हीकल है फास्टिंग। नॉइजलेस हेल्दी लाइफ का रास्ता है फास्टिंग। हेल्थ इंश्योरेंस है फास्टिंग, टर्म इंश्योरेंस है फास्टिंग।
0: Back in the day, the religion was a tool for it. Savan ka fast kya hai? Ramzan, similarly, a lot of these religions at the end of the day were trying to tell you and give you this information that it's a good time to give your body a break. But have we confused that? Jab hum Ramzan ko biryani khakar tod rahe hain, Navratri mein itna sabudana kha rahe hain aur itna fried food kha rahe
1: hain. I'll talk about the universal religion. Money. Save, invest, spend. You have your diet. It is a running currency. If you are eating more than required, a part of it is saved and it appears in your belly. So your belly keeps increasing.
0: Yeah.
1: So, madam, आपको fatty liver हो गया है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ना मैंने alcohol पी, मैं तो दाल रोटी खाती हूँ। 10 साल की उम्र से लेके आज तक आपने कितने समोसे खाए, कितनी जलेबी खाई, कितने रसगुल्ले खाए, सबकी गिनती बताओ। ये आपका उसका प्रोविडेंट फंड और शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ।
0: Fasting means no food. Or fasting means like Sonam Wangchuk only water.
1: इसको आप किसी भी तरह काम कर लीजिए, target calorie deficit ही है. Once in 15 days you should eat everything. But बाकी दिन मैं disciplined रहूँगा, protein high, fiber high. पर alternate Sunday में सब कुछ खाऊँगा.
0: But when you say सब कुछ खाऊँगा, you mean?
1: दिक्कत आती है जब हम स्कॉटलैंड को स्कॉच पीना सिखाते हैं. मतलब लोग पहले तीन बड़े-बड़े ड्रिंक विस्की के पीते हैं. उसके साथ टिक्के, फिर हाँ। दो चार पीस नान के खाते हैं, बटर हाँ। चिकन और उसके साथ
0: हाँ।
1: तो मैं सोच रहा होता हूँ ये एक रात में इतना खाना तो मैं दो हफ्ते में खाता हूँ भाई।
0: People think that fasting is equal to detox. क्या ये सच है, क्या ये मिथ है? नवरात्रि का फास्ट,
1: फ्रूट जूसेस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर फास्टिंग, फॉर डाइटिंग करते हैं, नहीं करना है। डाइट कोक पी लो आप उसकी जगह।
0: डाइट कोक इज बेटर देन अ फ्रूट जूस।
1: यस। फिर एक एक्ट्रेस ने बोला था, कौन सी है वो, सोनाली बिंद्रे, कि पता नहीं कौन सी वाली फास्टिंग से मेरा कैंसर वापस नहीं आया।
0: Do you think she's wrong?
1: कैंसर ठीक हुआ आयुर्वेद से। जब उनकी वाइफ गायनी की हेड रही हैं, हमारी टीचर रही हैं, मिसेस नवजोत सिद्धू।
0: साबुदाना, कुटू का आटा, मखाना, समक चावल, आलू चिप्स व्रत वाले, करवा चौथ पे निर्जल फास्टिंग।
1: Huh. I'm sure it's not controversial.
0: Hello and welcome to Doctor Versus Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत सारे व्यूज हैं, but surprisingly, it's the only topic where East actually meets West. It's one issue that modern medicine and traditional wisdom actually both agree upon. It is one thing that Hindus and Muslims both do. It is one thing that Sonam Wangchuk and Elon Musk also do. What am I talking about? I'm talking about the concept of fasting. It doesn't matter if you do it by the day or you do it by the hour. You do it by the month or you do it just because you feel like it. Fasting is something that goes on to just give more and more. And like I said, this is one issue where there is no versus. Everybody believes that there is some truth to it. But perhaps it is one of the most misunderstood things. Kai log fast ke naam par feast kar rahe hain, kai log fast ke naam par starve kar rahe hain. To sahi tarika kya hai fast karne ka aur kis tarike se fast bilkul nahi karna hai, uske bare mein hum aaj baat karenge. And to talk to me about this, I have with me Dr. Shubham Vatsya. Hello and welcome.
2: Thank you, ma'am. Thank you so much for having me.
0: Dr. Shubham, aise toh GI expert hai, but fasting par he has done a lot of research, so I thought it'll be interesting to sort of get him in. So, sabse pehle, Dr. Shubham, baat karte hain ki fasting ke process se ho kya raha hai body mein? If you can break it down very simply for us, when I'm not eating for a prolonged period of time, what is happening inside my body?
1: So you talked about a lot of religions. I'll talk about the universal religion, money. Okay, so every person in life, what he wants to do is that save, invest, spend. And with every day income or monthly income, 20-30% spend and save this 60-70%. That's how the Indian mentality is somewhere,
0: okay,
1: right?
0: Ha.
1: So now we are talking about things that when do you use 100% of your saving or your FD?
0: Hmm.
1: When the running cash flow dries up.
0: Hmm.
1: So I am equating cash flow to calories.
0: Hmm.
1: So you have a reserve in your body in the form of glycogen, in the form of proteins, in the form of fat. Right?
0: Hmm.
1: And you have your diet, which is a running glucose. It is a running currency.
0: Hmm.
1: So if you are eating more than required, a part of it is saved and it appears in your belly. So your belly keeps increasing.
0: Yeah.
1: So agar aap India mein किसी भी मेल या फीमेल की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल की फोटो ऐसे रख दे तो आपको फीमेल्स ऐसे फैलती हुई दिखेंगी, आदमी ऐसे फैलते हुए दिखेंगे और बाजुएं कम होती हुई दिखेंगी. ठीक है, फिर वो 50 साल की माता हमारे पास आती है, हम कहते हैं मैडम आपको फैटी लिवर हो गया है और आपको लिवर फाइब्रोसिस हो गया है, हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी आपके वायरसेस देखने के लिए. तो कहती है मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ना मैंने अल्कोहल पी, मैं तो दाल रोटी खाती हूँ. तो हमें पूछना पड़ता है कि मैडम 10 साल की उम्र से लेकर आज तक आपने कितने समोसे खाए, कितनी जलेबी खाई, कितने रसगुल्ले खाए, सबकी गिनती बताओ. ये आपका उसका प्रोविडेंट फंड और शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिल रहा. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. सी, ये अच्छे दिन की बीमारियां हैं. हम दोबारा वहां जा रहे हैं जहां हमारे पूर्वज थे. फास्टिंग, ठीक है, ये 50 साल पहले बीमारियां नहीं थी आपकी. फैटी लिवर, आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नहीं थी. ये अच्छे दिन है. दीज आर दी एक्चुअल अच्छे दिन ऑन द ग्राउंड.
0: लाइक माय डैड लाइक्स टू से, भरे पेट के मुद्दे हैं.
1: बिल्कुल, मैं तो मैं पेशेंट से नॉर्मली बात करता हूँ बिठा के कि यार ये तो अच्छे दिन की बीमारी है. तो हम क्या हो रहा है, वी आर बैक ट्रैकिंग, हम वहीं जा रहे हैं. तो फास्टिंग का मतलब है कि मैं अपने रिजर्व स्टोर्स को यूज कर रहा हूँ. दिस इज ऑपोजिट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ. राइट, कि पैसे मुझे यूज नहीं करने सेविंग वाले, पर कैलरीज मुझे यूज करनी है सेविंग वाली. क्योंकि आप ये देखिए, जो भी आप खा रहे हैं उसका फैट सबसे पहले डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, लिवर पे, जो रिजर्व है. 5% से ज्यादा लिवर सेल्स पे फैट डिपॉजिट हुआ, आपको फैटी लिवर हो गया. एक लिमिट आएगी लिवर की फैट डिपॉजिट करने की, वो फैट निकल जाएगा लिवर से. जब वो गॉल ब्लैडर में जाएगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा. जब वो आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, आर्टरीज कम हो जाएंगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा. जब आपके हार्ट में जाके वो कॉरोनरी में डिपॉजिट होगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा. जब आपके ब्रेन में डिपॉजिट होगा, आपको स्ट्रोक हो जाएगा. तो जब आपकी ओवरीज में जाके होगा, फीमेल्स को जो हमारी फेशियल हेयर और सबसे परेशान है, एक्ने, पीसीओएस या पीएमओएस हो जाएगा. तो ये एक स्पेक्ट्रम है. आप जब फास्टिंग कर रहे हो, बेसिकली आप इस सबको रोक रहे हो और एक्चुअली लॉन्गिटिविटी की तरफ जा रहे हो. इसी में हमारे पास कुछ दवाइयां आई जिससे आपके इन्फ्लुएंसर बाबा काफी परेशान हुए है ना. तो वो दवाइयों ने क्या करवाया, फास्टिंग करवाई. वो दवाइयां हम रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं.
0: GLP-1 ड्रग्स की बात कर रहे
1: हैं. किनको करते हैं, सही इंसान को करते हैं. कैसे करते हैं, सही सुपरविजन में करते हैं. क्या वो ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल है. पर क्या हर इंसान को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. बट इवेंचुअली वो क्या करा रहा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, फास्टिंग.
0: यू आर राइट कि ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है. पर टाइप्स ऑफ फास्टिंग की बात करते हैं एक बार. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. कुछ लोग उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ लोग उसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज उसे ओमैट बोलते हैं, वन मील अ डे. कुछ लोग इसे वाटर फास्टिंग बोलते हैं, फ्रूट फास्टिंग है. मतलब इस समय जितने इंटरनेट पे लोग हैं, उतनी तरह की फास्टिंग
1: स्केड्यूल्स. मेडिकली मैम 6 तरह की फास्टिंग होती है.
0: ओके,
1: अगर हम उसे क्लासिफाई कर पाए, पहले तो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग.
0: दैट्स IF.
1: हाँ, मतलब एक तरह का 16-8 बोल लो, 18-6 बोल लो, 23-1 बोल लो, ओमैड हो जाएगी वो. ठीक है, वो तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, जो हमारे पूर्वज करते थे कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले खा लो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम दो. ठीक, दूसरा है पीरियोडिक फास्टिंग, जिसकी बहुत सारी स्टडीज है. इसको 5:2 बोलते हैं, जिसको नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज पे हम 10% से कम कैलोरीज लेते हैं. मतलब मंडे 10% से कम कैलोरीज जो नॉर्मली लेता हूँ, ट्यूजडे वेनेसडे नॉर्मली जिया, थर्सडे फ्राइडे में से कोई एक दिन, और अगली वीक में वो दो दिन अलग, मतलब रैंडम होगा हर हफ्ते. पर हर हफ्ते में दो दिन का उपवास करूंगा, जो एक्चुअल उपवास होगा. ठीक है, ये हो गई आपकी पीरियोडिक फास्टिंग. फिर आता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, इस पे भी काफी स्टडीज है. इसमें अगेन ऑल्टरनेट डे आप 10% से कम कैलोरीज ले रहे हैं नॉर्मल कैलोरीज की. फिर आता है आपके मॉडिफाइड ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, इसमें 50% से कम आप ले रहे हैं. फिर आता है एक्सटेंडेड प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जो 3 दिन से ज्यादा आप फास्ट करते हैं, जो डेंजरस एरिया है. और फिर आता है रिलीजियस फास्टिंग. तो मेडिकली ये 6 तरह की फास्टिंग होती है. इसको आप किसी भी तरह काम कर लीजिए, टारगेट कैलोरी डेफिसिट ही है. कितने मर्जी फैंसी शब्द दे लीजिए, टारगेट कैलोरी डेफिसिट ही है. मैथ्स में अगर गल्ले की बात करें, 7700 किलो कैलोरीज का पॉजिटिव बैलेंस 1 किलो गेन, 7700 किलो कैलोरीज का नेगेटिव बैलेंस 1 किलो लॉस. मेंटेनेंस 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे. अगर आप 80 किलो के हैं और आप 2400 कैलोरी खाएंगे तो साइंस के हिसाब से आपका वेट सेम रहेगा. अगर आप उसे 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे कर देंगे तो 5 किलो कैलोरी पर केजी एक्स्ट्रा हो गई दिन की. तो 80 × 5 400, 7700 को 400 से डिवाइड कर दो, 18 दिन में आपका 1 किलो गेन हो जाएगा. 18-19 दिन में. इसी तरह उसको माइनस कर दो तो 18-19 दिन में 1 किलो कम हो जाएगा.
0: बट ये ना कैलकुलेशन बताना और सुनना आसान होता है लोगों के लिए. ये कैलकुलेट करना कि दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है.
3: इमोशनल अटैचमेंट है ना,
0: बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड. एंड देन स्पेशली आवर जनरेशन विच वेयर फूड इज सच अ ट्रेडिशन, वेयर फूड इज एन इमोशन, वेयर फूड इज लव, उस समय उनको बताना कि आपका ये जो मम्मी हलवा बनाकर लाई है वो बेटा प्यार नहीं है, वो 150 कैलोरीज है, तो वो नहीं समझ में आता लोगों को. उसका कोई हैक है टू ट्राई एंड टेल देम दैट हाउ डू यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट यू आर कंज्यूमिंग.
1: मैम सी, देयर इज नो शॉर्टकट टू डिसिप्लिन. तो हैक तो एक्चुअली लाइफ में मुझे लगता है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इफ यू आस्क मी. बट यस, आई वुड से दैट वंस इन 15 डेज यू शुड ईट एवरीथिंग.
0: ओके,
1: एवरीथिंग. बिकॉज ये कोई साइंस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सस्टेनेबल मॉडल, डिसिप्लिन का तरीका. 14 दिन मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, चिल करूंगा, लाइफ में मिनिमल खाऊंगा जो मैं करता हूँ, पर ऑल्टरनेट संडे में सब कुछ खाऊंगा. तो मेरा इमोशन भी रह गया, मेरी कैलोरीज भी रह गई, बट बाकी दिन मैं डिसिप्लिन रहूंगा, प्रोटीन हाई, फाइबर हाई, मीडियम फैट, लो कार्ब डाइट खाऊंगा.
0: आई सी. बट व्हेन यू से सब कुछ खाऊंगा, यू मीन
1: छोले भटूरे भी खाऊंगा मैं ऑल्टरनेट संडे,
0: बट यू विल कंट्रोल योर पोर्शंस.
1: हाँ, एक भटूरा खा लूंगा. एंड मैम होता पता है क्या है,
0: क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे सब कुछ खाने का, लोगों को सुनेगा दबा के खाना है. उनको
1: मैम ठीक है, अगर
0: डिफरेंस नहीं समझ में आ
1: रहा, अगर आप 14 दिन कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो 15 दिन आप अगर 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा भी खा लेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी. दिक्कत आती है जब हमने, इफ आई कैन से दैट, आई एम श्योर इट्स नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, जब हम स्कॉटलैंड को स्कॉच पीना सिखाते हैं.
0: एक्सप्लेन.
1: हमारी सोसाइटी में जो सोशलाइजिंग होती है, मतलब आफ्टर द सोशल मीडिया वायरलिटी में तो बहुत ज्यादा देख ली कि मैं कहीं जाता हूं तो मतलब लोग पहले 3 बड़े बड़े ड्रिंक विस्की के पीते हैं, उसके साथ टिक्के और पता नहीं कौन कौन से स्टार्टर खाते हैं, फिर 2-4 पीस नान के खाते हैं, बटर चिकन और उसके साथ. तो मैं सोच रहा होता हूँ ये एक रात में इतना खाना तो मैं 2 हफ्ते में खाता हूँ भाई. भाई आपने वो स्कॉच जहां से बनी है, मतलब स्कॉटिश हाइलैंड्स वालों को वो अगर आ जाएंगे यहाँ पे इनवरनेस से और वो ग्लासगो से और देखेंगे कि हमारी स्कॉच के साथ क्या हो रहा है, वो तो सुसाइड कर लेंगे. वो तो बेचारे बोलेंगे भाई मैं ही मतलब पहले मर जाता हूँ यार. मतलब वो बेचारे 6-8 बजे अच्छा खासा डिनर करके 30 ml 60 ml करके सो जाते हैं, ठीक है, मतलब लिटरली सो जाते हैं. और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं कि रात को 4 बज रहे हैं यार, एक ड्रिंक और पी लेता हूँ. ड्राइवर तो मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग. मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है, ये एक्चुअल रियलिटी है. और ये अपर मिडिल क्लास में और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में थोड़ा ज्यादा है. और मतलब इट्स आई कॉल इट लाइक डोंट टीच द स्कॉटिश how to scotch.
0: But let me come back to fasting for a little bit, because you know this noise that you're talking about, this food noise is what a lot of people struggle with. I also think back in the day jab logo ke paas apni baat pahunchane ka, scientific research pahunchane ka tarika nahi tha, so religion was a tool for it, right?
1: Yeah.
0: Bhagwan ke naam par log aapko bolte the ki jabhi bhi na saavan ka fast kya hai, weather is turning, infection is out there, your gut is also resetting in a way, so it's a good time to give it a break, right?
1: Okay.
0: Ramzan similarly comes at a time when back in the day there, in that part of the world, there used to be a turn in the weather, right? Navratri, think about it again, comes at a time when again the weather is turning. Lent comes at a time when the weather is turning. A lot of these religions at the end of the day were trying to tell you and give you this information that it's a good time to give your body a break. But have we confused that with different kinds of things? अब हम रमजान को बिरयानी खाकर तोड़ रहे हैं, नवरात्रि में हम हम नवरात्रि में इतना साबूदाना खा रहे हैं और इतना फ्राइड फूड खा रहे हैं दैट एट द एंड ऑफ इट यू आर मोर कैलोरी यू नो डेंस देन यू आर कैलोरी यू नो कॉन्शियस. सो इज देयर अ राइट वे टू फास्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली डज फास्टिंग मीन? फास्टिंग मीन्स नो फूड और फास्टिंग मीन्स लाइक सोनम वांगचुक ओनली वाटर? व्हाट एग्जैक्टली इज फास्टिंग?
1: Let me just talk about the science of fasting. Okay. I had my last calorie, if this is the last calorie I have, at 1 p.m. On Tuesday, today is 4th August. What will happen the next 6 hours, if I don't have anything? The glucose I'm taking will fuel my cells. दूसरा एक ग्लूकोज जब एक्सेस में होता है जो मैं बता रहा था तो रिजर्व में कन्वर्ट होता है जो लिवर और मसल में डिपॉजिट होता है ग्लाइकोजन बोलते हैं. बेसिक सा एक स्टोरेज फॉर्म है उसका. सबसे पहले टू द फोर्टे आता है वो. आपका लिक्विड सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा है, जैसे पैसे कम हुए वो आ गया. लो लिवर वाला ग्लाइकोजन आके टूटता है और 6 से 24 घंटे में खत्म हो जाता है. आपने कुछ नहीं खाया तो मसल वाला नहीं आ पाता क्योंकि एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो ब्रेक करता है, मसल वाले में नहीं होता, मसल ग्लाइकोजन में, तो लिवर वाला खत्म हो जाता है. 24 घंटे ऑफ फास्टिंग, कैलरी नहीं गई है. ब्लैक कॉफी गई होगी, ठीक है, चीनी नहीं थी उसमें, पानी गया होगा, ठीक है, बट कैलरी नहीं गई है. यू अंडरस्टैंड? 24 घंटे बाद ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए. तो अब वो कुछ अमाइनो एसिड, एलानिन लिवर में, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, इन सबसे ग्लूकोज बनाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजन जब टूटा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन. और जो 24 घंटे के बाद हो रहा है कि ग्लूकोज दूसरी चीजों से बन रहा है, ग्लाइकोजन खत्म हो रहा है, ग्लूको नियोजेनेसिस, जेनेसिस प्रोडक्शन, नियो न्यू ग्लूको ग्लूकोज. सो न्यू ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. अब क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं हम टूवर्ड 72 आवर्स जाते हैं, आपकी स्केलेटल मसल टूटने लगती है, विच इज अ रेड फ्लैग फॉर दी बॉडी. तो बॉडी के कंजर्वेटिव मैकेनिज्म चालू होते हैं. जो डे 2 होता है वो फास्टिंग का सबसे टफ डे होता है. क्योंकि आपके पेट से जो भूख हार्मोन है ग्रेलिन जी सेल बनाता है पेट में, वो बढ़ता है. क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज की आदत है. अब ये 24 to 72 आवर्स में जैसे जैसे ग्लूकोज बन रहा है, स्केलेटल मसल टूट रही है, लिवर एक नई चीज बनाने लगता है, कीटोन. और कीटोन बढ़ता है. अब ब्रेन को कीटोन मिलने लग जाता है. ये बॉडी का मैकेनिज्म है स्केलेटल मसल को बचाने का. 72 आवर्स के बाद बॉडी प्राइमरली कीटोन पे जिंदा रहती है. और इंसुलिन आपका गिर जाता है, ठीक है, कि ग्लूकोज जितना भी बढ़ पाए और बॉडी कीटोन पे चल रही है. तो अब आपको भूख लगनी बंद होती है क्योंकि आपके ब्रेन को कीटोन मिल रहा है. तो अगर आप 3 से 7 दिन में लोगों से मिलोगे जो फास्ट कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि भाई कोई नहीं, जिंदा रह लेंगे, 2 दिन तक मुश्किल था, अब ठीक हो गया है. ये डेंजर एरिया है मैम, बिकॉज यहाँ पे 7 दिन के बाद आपका 10% स्केलेटल मसल लॉस होते ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे सोनम वांगचुक साहब को एडमिट किया गया था दोबारा खिलाने के लिए, जिसको हमारी भाषा में रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं. अब आपने 10 दिन तो फास्ट कर लिया, अब आपने बोला ला भाई छोले भटूरे, आपने खाए, 2 घंटे बाद वो कार्डियक अरेस्ट हो गया. तो उसमें बहुत जो वांगचुक साहब के साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ. मॉनिटरिंग के अंदर लो कार्ब मील से 5 से 10 किलो कैलोरी पर केजी दिया गया रीफीडिंग सिंड्रोम बचाने के लिए. ये है साइंस फास्टिंग की. आप इसमें किसी भी तरह इसको नाम दे लो, आप रिजर्व्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो अपने डेली बॉडी नीड्स के लिए.
0: गॉट इट.
1: दिस इज फास्टिंग एंड दिस वी आर डूइंग टू प्रिवेंट विसरल एडिपोसिटी, कि फैट टूटेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी. ऐसे फास्ट करेंगे कि हम कीटोजेनेसिस में ना जाए, परसिस्टेंट कीटोजेनेसिस में, जो डायबिटीज में भी होता है, स्टारवेशन में भी होता है, अल्कोहलिज्म में भी होता है. 3 मेन कॉज होते हैं कीटोजेनेसिस के. कीटोजेनेसिस इज द crisis mode of the body.
0: Got it. A lot of people think that fasting is equal to detox. Kya ye sach hai, kya ye myth hai?
1: Myth hai. Puri tarah super myth hai. Matlab granddaddy of myths hai, because aapki body ke paas natural detoxification mechanism bahut acche se hain. Aapka liver pehle hi phase 1 phase 2 reactions ke through aapke major toxins ko detoxify karta hai. Sabse bada toxin kaun sa jo liver detoxify karta hai? Alcohol. तो बढ़िया से वो कर रहा है. दूसरा, जो टॉक्सिन्स अब डिटॉक्सिफाई हुए हैं उन्हें शरीर के बाहर किडनी फेंक रही है. आपको डिटॉक्सिफाई करना है अगर, तो मेरा रिकमेंडेशन प्लेन वाटर है, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करे और अच्छे से यूरिन लाए कि वो सिस्टम पार हो जाए. सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन की दवाई जो 70 साल से चल रही है, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो यूएस से बैन हो चुकी है, वो है लिवर 52.
0: ओके.
1: एंड इंडिया का ब्रांड है जो 1955 से चल रहा है शायद, और उससे कुछ नहीं होता है, पर हर आदमी इंडिया में अल्कोहल के साथ वो ले रहा होता है. कि मैं तो लिवर 52 ले रहा हूं, इसलिए सब कुछ ठीक है.
0: तो
1: आपको
0: डिटॉक्स नहीं है फास्टिंग,
1: रिजर्वायर एक्सेस यूज है फास्टिंग. फास्टिंग ईवी है गाड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है. डीजल और इथेनॉल वाले पेट्रोल के जमाने में इलेक्ट्रिक व्हीकल है फास्टिंग. नॉइजलेस हेल्दी लाइफ का रास्ता है फास्टिंग. अस्पताल के बाहर रहने का तरीका है फास्टिंग. हेल्थ इंश्योरेंस है फास्टिंग. टर्म इंश्योरेंस है फास्टिंग.
0: सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग दैट लार्जली फास्टिंग इज डन टू कीप योर बॉडी ऑन अ कैलोरी डेफिसिट एंड दस ब्रेक डाउन द फैट डिपॉजिट्स व्हिच आर देयर. आई गेट दैट, बट यू नो एज अ वे ऑफ जस्ट सॉर्ट ऑफ रिसर्चिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, आई फास्टेड फॉर 24 आवर्स यस्टरडे. Right, it was also Savan ka Somar. My mother was very happy. So, and but my way of fasting was very different from say a traditional Savan ka fasting, jisme wo falahar khana bhi khate hain, jisme kutu ki pakodiyan banti hain khub se tel ke saath, uske saath aloo fry hota hai, and a lot of other stuff that goes into
1: mouth watering fasting.
0: Feasting hai, wo actual feasting hai, right? So I did a fast in a very different way. I told myself, okay, I will continue to take fluids throughout. And I want to do a gut reset as well. So I will continue. If I'm feeling hungry, I'll take like a mattha, like a buttermilk or something like that. And I'll take coconut
1: Sweet.
0: Water. No. Namak.
1: So your sugar you didn't have for 24
0: no.
1: hours.
0: No. Okay. So there was no sugar, but
1: and
0: I had...
1: And how much sugar do you take regularly in your life?
0: So I don't do sugar.
1: And say for how long?
0: And I do monk fruit instead. So I don't do added sugar. Let me correct that. So I'm not adding sugar to any of my stuff.
1: Ice cream?
0: Rarely. Once in 15 days.
1: Mango?
0: To be precise. Maybe one mango in 2 days.
1: Okay.
0: Hmm.
1: And no sweet coffee, chai, cold drink,
0: no,
1: nothing?
0: No, no.
1: Okay. Very good. For me, it's been 8 years since I had sugar.
0: Wow. Added sugar, you mean?
1: Ice cream also.
0: Yeah.
1: Sweets
0: no
1: also.
0: Ice cream, huh?
1: Sweets also.
0: Oh, wow. Yeah.
1: So I think sugar is the new alcohol.
0: Sugar is indeed the new alcohol. But what I'm trying to tell you is that my way of fasting, from what I understand, was very different. My body needed a break. And if I had followed the traditional way of fasting, which was ki ye bhi khao, wo bhi khao, and fir raat ko khub mera jhagda hua meri ammi ke saath ki yaar pure din kaise bhookhi reh sakti ho, kuch to tumhe ek meal to khana chahiye tha, ye koi tarika nahi hai fast karne ka. To which I told her that I will understand from a expert on what is the right way to fast. Agar aap fast kar rahe hain, to give your body a break, it is once a week. What is the correct way to fast?

अभी समय तो हो गया है, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। कोई अपने डिपार्टमेंट में एक बार फिर जाना चाहेगा, कोई अपने पसंदीदा अड्डे पर कुछ देर और बैठना चाहेगा। और साथियों, इन भावुक पलों में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, जब जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा, तो ये कैंपस लाइफ, आपके दोस्त, टीचर्स, मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ जो आपका परिवार बन गए, आपके प्रोफेसर्स जिन्होंने आप जैसी प्रतिभाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी उठाई, और आपका ये इंस्टीट्यूट जो धीरे धीरे आपका अपना घर बन गया, आप अपनी हर सक्सेस में इन सब को याद करेंगे। इन सब के लिए थैंकफुल होंगे, और इसलिए इन्हें एक एसेट के तौर पर यहां से लेकर के निकलना, भूल मत जाना, छोड़ मत जाना, साथ ले जाना। मेरा सुझाव होगा कि जाते जाते यहां के हर सदस्य मिलकर के जाइए, और आप कहीं भी रहे कोशिश करिएगा ये हमेशा हमेशा ताजा बना रहे। साथियों, आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है, ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो IIT दिल्ली से सीखा है। आखिर आपकी ये डिग्री क्या कहती है? क्या सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम पास किया, अच्छा CGPA हासिल किया,
या एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया, निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है। लेकिन मुझे लगता है आपकी डिग्री दुनिया को ये बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। आप अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए, यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, यहां की पढ़ाई भी आसान नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ये डिग्री आपको एक दिन में नहीं मिली, एक एक विषय, एक एक प्रोजेक्ट, मिड सेम, एंड सेम, इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने
वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए। लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इसे देश को क्या फायदा होगा, इसे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी। सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं। साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर मिला था, तब मैंने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स की चर्चा की थी। तब तक इस सेक्टर में लगभग पूरा काम
सरकार ही करती थी, लेकिन आज वही स्पेस सेक्टर हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों का आकाश बन चुका है। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दुनिया के गिने चुने देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। साथियों, आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है। इसी इंस्टीट्यूट से कितने ही फाउंडर्स निकले हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट से इतना कुछ हो सकता है तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है। यूनिकॉर्न्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक रिवॉल्यूशन, इन सभी ने देश के लाखों युवाओं को पहली बार कुछ नया करने का अवसर दिया है। साथियों, अभी ऐसे भी अनेक सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ देश आप जैसे युवाओं की ओर देख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। साथियों, अब एक और बड़ी संभावना आप सबके सामने है और वो नया अवसर है रिसर्च। आज देश को नई नई रिसर्च की बहुत जरूरत है और रिसर्च पर हमारा उतना ही फोकस भी है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को
रिसर्च करने का अवसर दे रही है, आइडियाज को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की गई है। अनुसंधान

0: समझा रहा हूं। इसी तरह साथियों, एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। साथियों, मुझे पता है अभी इस दिशा में हमें लंबी दूरी तय करनी है और ये काम रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात आप पर भरोसा भी है। साथियों, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माता पिता को, परिवारजनों को विशेष बधाई देता हूं। आपके शिक्षकों को और उन सभी लोगों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस पूरी यात्रा में हर कदम पर आपके साथ खड़े रहे हैं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: Viewers, that was the Prime Minister addressing the IIT Delhi convocation ceremony of the students, and he's come out to make quite a youth inspiring address here with a message that in the upcoming decades, it is these students, the young India, that will be taking up the vision of Viksit Bharat, be it in whichever ways, they will have a role to play in it and they will have contributions to make towards a developed India. So that is the message that he in fact sent out from IIT Delhi at the convocation ceremony. He's spoken about also how it is not, of course, he's also had shared some of the light moments with the students about how they will be missing their college lives. But at the same time,

0: उनकी एक जो छोटा सा क्लिप आया है उनका वीडियो क्लिप, उसमें भी देख के शायद लग रहा है कि ऐसा हो सकता है वो किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में हो, आई विटनेस भी जो वही कह रहे हैं। फिलहाल कोई खबर आई है ऐसी उनकी स्थिति के बारे में?
1: देखिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि मौके से ही पकड़ा गया था, करीब 8:30 बजे वो गाड़ी से उतरा नहीं था, वहीं पर लोग मौजूद थे और वहीं पर जब पुलिस को कॉल करके बुलाया गया तो मौके से ही शुभम को पकड़ लिया पुलिस ने, उसे अप्रिहेंड किया गया और उसका मेडिकल कराया गया है। अब हमारी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट शाम तक पूरी डिटेल एक मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो पूरी FIR है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी। अगर जाहिर तौर पर अगर आप शराब के नशे में और सही दिशा में गाड़ी नहीं चला रहे तो आपके ऊपर जो धाराएं लगती हैं वो काफी कड़ी और सख्त धाराएं लगती हैं, जो BNSS में अब जो चेंजेस आए उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन जो हादसा हुआ आप ये देखिए कि कितना जबरदस्त वो हादसा था कि जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इसी तरीके की रोड है वो, मैं वहां पर जब था तो मैंने देखा कि बीच में एक लाइन खींची थी, पतली रोड है क्योंकि कॉलोनी की, और वो दूसरे साइड से आ रहा था क्योंकि पेड़ था बीचों बीच सड़क के, और वो जब आ रहा था तो वैगनार अपनी तरफ से आ रही थी और इसने जब टक्कर लगी है मर्सिडीज से वैगनार को तो वैगनार तकरीबन 12 से 15 मीटर पीछे गई है और पीछे जाके वो पूरी तरीके से घूम गई है। और वहां पर एक ऑटो पार्क था, उस ऑटो के पीछे बुजुर्ग उर्मिला खड़ी थी, चिड़ियों को दाना देने गई थी, वो जब वैगनार जाती और घूम के वहां पर खड़ी होती है तो बीच में वो ऑटो और उस वैगनार के पूरी तरीके से वो दब जाती है।
0: सीरीज जो थी वो गलत साइड से, रॉन्ग साइड से आ रही थी, मानसो ये चीज कंफर्म्ड है।
1: बिल्कुल, देखिए
0: जी, जी हिमांशु मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा, व्यूअर्स वी आर कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, बट यस यू हैव गॉटन आइडिया ऑफ हाउ द एक्सीडेंट इन फैक्ट केम अबाउट। हिमांशु थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। ऑन दैट नोट वी आर रैपिंग अप द बुलेटिन राइट हियर दिस आवर, बट डू स्टे ट्यून्ड टू इंडिया टुडे एज वी विल बी फॉलोइंग अप दिस स्टोरी एंड ऑल द रेस्ट इन द नेक्स्ट आवर्स बुलेटिन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, दिस इज प्रिया कुमार।
2: Watching India Today.
3: Out of the 50 years that India Today has been under publication, I witnessed more than 40 years of it. And some of the most exciting stories that I've done were with India Today. And these include, just on the top of my head, covering the 1998 Pokhran blast and getting the exclusive photos of scientists, including Dr. Kalam and Dr. Chidambaram and a host of other top scientists dressed in army fatigues to fool the CIA as they prepared for the test and lowered it. And we had those exclusive photographs and the entire story. We were a witness to history. We had a ringside view of it. And we brought all the drama, the history, the color, the action, the violence, everything in one magazine that made history all the time and even now continues to do so. And if you want to relive this experience and see how India Today was eyewitness to the nation's 50 years, do go across on August 7th and book your ticket, because this is one journey that you shouldn't miss.

0: Shraddha Patel played a crucial role. She remained in contact with her father and informed Vimal about his movements. The moment Vinod Bhai left the medical store on his Activa, Vimal was ready. Driving the white Brezza, Vimal allegedly began following Vinod Bhai from a distance.
1: Oh sir, mujhe pata nahi, abhi mere ko kuch bolna nahi.
2: क्या वो गाड़ी तो चला रहे थे?
1: हाँ, मैं चला रहा था, लेकिन अभी कुछ मेरे को बोलना
2: था. अच्छा, वो बनने वाले कौन थे? वो आपके क्या लगते थे? विनोद भाई क्या थे आपके?
1: मुझे कुछ बोलना नहीं है सर.
0: पुलिस डिटेन्ड रीताबेन पटेल एंड श्रद्धा पटेल फॉर क्वेश्चनिंग. नाउ विद द कंस्पिरेसी एक्सपोज्ड, बीजापुर पुलिस अरेस्टेड ऑल थ्री अक्यूज्ड. लीगल प्रोसीडिंग्स हैव नाउ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट देम.
3: ये घटना के जो आरोपी हैं, उसमें मुख्य आरोपी जिसने पूरा प्लान तैयार किया था, वो रीटा बेन जो विनोद भाई की पत्नी है, और श्रद्धा जो विनोद भाई जो जिसकी डेथ हुई है उनकी बेटी है, और जिसने ये एक्सीडेंट किया था पटेल विनोद रोहित भाई जो उनका ये रीटा बेन का भांजा लगता है, इन तीनों को हमने पुलिस हिरासत में ले लिया है.
0: Three people accused of conspiring to end one man's life by making his death look like fate. His own people. They tell the story of a family that fell apart so completely that the road became the chosen murder weapon.

0: are watching India Today.
1: Hey, good evening. You're watching India Today. I'm Suesha Sawant. We begin with the top headlines we're tracking for you this hour. Party is resolved to oppose delimitation bill in the MPs meeting called for by Chief Minister Vijay. Congress says the strength of Parliament should be frozen at 5:43. DMK and AIADMK boycott the meeting. Day after Sukhbir Singh Badal met with Prime Minister Narendra Modi, Akali Dal has announced its support for delimitation bill, provided it follows the 50% seat increase in all states proposal. Akalis also seek immediate implementation of women's quota. Protests over exam irregularities in Jharkhand enters 15th day. PIL filed in Supreme Court seeking CBI probe into JPSC exam row. Second round of talks held. Protesters say talks were positive. Reiterate proposed Vidhan Sabha Gherao on the 10th of August. Kiran Rijiju challenges Congress to support women's reservation bill unconditionally. This after Rahul Gandhi's call for freedom of expression of women in a video put out by the party. Rahul Gandhi hits back, tells government to implement 2023 women's reservation law. Big statement by Congress MP Shashi Tharoor says Congress's Chhatro Ki Goonj does not resonate with the youth as much as the CJP's leadership of the students' movement. Says Congress needs to have a finger on the pulse of people.
2: Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Janta Dantha protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatro Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
3: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
1: Drink and drive claims yet another life. Elderly woman dies after a speeding Mercedes rams into another vehicle which ended up crushing 70-year-old Urmila. Accused identified as Shubham, son of Haryana police sub-inspector, he has been detained. And first up, we cut across to breaking news coming in. DMK has hit out at Chief Minister Vijay over the all-party MPs meeting on delimitation issue, asking what was the need for this when a similar meeting had already taken place during Chief Minister M.K. Stalin's reign. The M.K. also insists that it has two demands, 33% reservation for women and delimitation not on the basis of population. So that, as DMK's position now gets clear, remember DMK had boycotted the all-party meeting, and now this response coming in from the DMK to say what was the need for this meeting when the same meeting was also held during Chief Minister M.K. Stalin's reign. But most importantly, where does the DMK stand? Now, what seemed like the DMK softening its position, especially when 2 days ago, Udayanidhi Stalin had spoken to India Today to say that we stay on our position and we do not support delimitation. Now, they're saying that it is based on two demands, 33% reservation for women and delimitation not on the basis of population. Let's listen in.
4: இந்த கூட்டம் நடத்துவதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக இல்லை. ஏன்னா இதே போல ஒரு கூட்டத்தை எங்களுடைய கழகத்தின் தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது 5/3/2025 நடத்தியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று 33% பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று. அதுதான் எங்களுடைய தொடர்ந்த கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆனால் சில இடங்களிலே கிட்டத்தட்ட சில தொகுதிகளில் 40 லட்சத்துக்கு மேலே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் டீலிமிட்டேஷன் கொண்டு வரக்கூடிய இந்த கொண்டு வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய இதில் பாப்புலேஷன் பேசஸ் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கொண்டு வந்தால் நமக்கு மிகப்பெரிய முக்கியமாக தென் மாநிலங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருக்கும்.
1: And that is Kani Moy speaking for the DMK to say that they have two demands primarily, when it comes to delimitation. Firstly, it should not be on the basis of population. Remember, this is something that the southern states especially have been harping upon, given the lesser population size, but also for them to say that just because we have been able to contain our population does not mean that they have lesser representation in parliament. And the other, of course, as Kanimoyi said, that the DMK is insisting on 33% reservation for women. Now, this is important because until earlier, DMK's statement that came in to say that they will go through the finer print of the bill that will be proposed by the centre and then they will take a call. DMK has been ascertaining of how they stand against delimitation, and that is exactly what Udayanidhi Stalin had stated in that interview to India Today. But now, you see how the DMK is speaking. Remember, TVK had also said that there is a likely chance that DMK will either support or stage a walkaway when it comes to the delimitation bill in Parliament. This is, of course, something that the DMK has rejected. But that is what sources within the TVK said. As far as the DMK is concerned, they did not attend the all-party meeting today. They said that a similar meeting had been held during MK Stalin's reign. Then why is it that this meeting was required for today? As far as the conclusion of today's meeting is concerned, yes, all the parties who attended that meeting, including the TVK, Congress, left parties and VCK, also to say that they are not in support of delimitation. Now, whether any sort of alteration or whether their demands are fulfilled and that may lead to a reconsideration is something that is difficult to say, because today's meeting's conclusion was very clear that those who had attended the meeting, they are not in favor of delimitation. But that is the latest statement that is coming from DMK, saying that as far as today's meeting is concerned, the agenda was very unclear, because the state of Tamil Nadu has been forthright in expressing where they stand as far as delimitation is concerned. Remember earlier, there was also a statement from the DMK to say that one of the reasons they had also not attended the meeting is because they will go through the finer print of what the centre proposes. But two demands that they have expressed very clearly. One, 33% reservation for women, and the other, that the size of representation for the state of Tamil Nadu should not be dependent upon population. Meanwhile, the government has issued a clarification amid widespread rumours that UPI charge will incur charges. The centre has insisted that consumers making payments will not face any sort of transaction charges. It has also claimed that all person-to-person transactions will continue to be free of charge. As and when MDR charges are introduced, they will apply only to a limited set of merchant transactions above a certain threshold at a nominal rate far lower than debit or credit card MDRs. Vast majority of the transactions will remain free of charge for merchants on UPI. MDR, if introduced, will only be threshold-based and not blanketly levied to all. That's a big announcement coming in as questions over what that will cost and how much the transaction charge will be, who all will it apply to. Let me take this to my colleague Karishma Asudani, joining us with further details of the centre's clarification on this matter.
5: Honestly, since the law was introduced in the parliament, there was an absolute clarity on the fact that there will be no additional charge when it comes to UPI transactions for P2P, that is person to person, or any individual. For example, when you go to a general kirana store and buy something and you pay it and you make the payment by UPI, you will continue to not pay any additional charge. But the nominal MDR that government has now decided to in fact import will be for merchants. And it will be applied only to a limited set of merchant transactions, big merchants, probably in all case e-commerce websites, which deal with an annual turnover of more than 4 crores. And this merchant charge, this MDR charge, will be imposed on the merchant and not the consumer. This clarification by Ministry of Finance very clearly comes in because of the confusion that was across social media. If now an individual will also pay a charge on UPI.
1: All right, Karishma, many thanks for those details. And well, BJP takes a jibe at Rahul Gandhi after Shashi Tharoor flags failure of Chhatro Ki Goonj impact. BJP says that it has exposed the double-faced duplicity of Rahul Gandhi, asking Congress MP why isn't he speaking with Jharkhand Chief Minister Hemant Soren over exam irregularities. Now, this is a question that has been posed to Rahul Gandhi, where he recently also spoke to the students and the protesters in Jharkhand. BJP taking this latest jibe at Rahul Gandhi. Listen in to what is being said.
6: On one hand, Rahul Gandhi does not find the time to go and meet students in Jharkhand who are currently fasting, and some of them have even fainted. But yet Rahul Gandhi finds time to go to Prayagraj to participate in his Chhatron Ki Goonj program. Why does not the Congress party withdraw support to the Jharkhand government? The whole nation is watching Jharkhand and the manner in which the students are protesting and fighting for justice. But at the same time, Rahul Gandhi and the Congress party stand completely exposed for their double dealing, double standards.
1: And well, Congress MP Shashi Tharoor has once again put his own party in an uncomfortable spot, this time with a blunt assessment of Rahul Gandhi's outreach to young voters. Tharoor says that Chhatro Ki Goonj campaign failed to strike the same chord as the recent student protests. And his latest remark comes amid a string of occasions where Tharoor has publicly differed with the Congress line. Take a look. In fact, more and more reactions that are coming in on this.
7: Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था एक ऐसा टाइम था व्हेन अलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री दिस इवनिंग आज शाम मैं आपसे दर्द डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं आपका दर्द आपका डेटा मगर आपका धन नहीं जो आपका होना चाहिए उनका धन इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं ये आप हो आप भारत की शक्ति हो भारत की शान हो भारत की स्ट्रेंथ हो और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो भारत की स्ट्रेंथ हो मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक हर यूथ की बात कर रहा हूं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं आप सब में इंटेलिजेंस है इमेजिनेशन है कैपेसिटी है और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है 40 करोड़ युवा आप जैसे युवा एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं ये इस देश की स्ट्रेंथ है चाइना की बात होती है अमेरिका की बात होती है रशिया की बात होती है इंडिया के यूथ के सामने इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है 21वीं सदी में एक और चीज हुई है 21वीं सदी में, अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st century इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है, एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए, आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है, आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाइयों और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि हाँ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए, एक युवा की आवाज सुने, ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है, ये जो सवाल उठा रहे हैं हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है।
8: होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता।
7: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा, और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है, और कोई अमीर बच्चा अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए वेलकम, कैसे हैं आप, नाम क्या आपका?
9: मेरा नाम सर अजय राघव है।
7: अविनाश और अजय, आइए अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए।
9: सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ।
7: पास पकड़ते हैं।
9: सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ, और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है, 2020-21। यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी, इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट डमी कैंडिडेट पकड़े गए, हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई, और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं, मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो UPPRPB जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, हमें इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। क्या दिक्कत है, अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है।
10: मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूँ, चूंकि मैं ये कह सकता हूँ सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद
7: ये होता क्यों है
10: सर? ये सरकार की मानहानि है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी।
1: एंड राहुल गांधी होल्डिंग दैट बिग इवेंट, दिस इज पार्ट ऑफ छात्रों की गूंज दैट इज हैपनिंग इन यूपी प्रयागराज, वेयर ही इज रेकिंग अप द पेपर लीक इश्यू, एंड देयर यू सी ही इज इंटरैक्टिंग विद मेनी ऑफ दोज इन द क्राउड। राहुल गांधी सेड द पेपर्स आर लीक्ड, दे आर बॉट बाय द रिच, एंड इट इज टाइम दैट द यूथ स्पीक्स। यूथ एंड डेटा, that has become equivalent to the 21st century economy, and the youth must raise their voice. Rahul Gandhi raking up Paper League once again. Remember, this is the event that is happening in Prayagraj, and Rahul Gandhi directly interacting with the youth to hear from them their voice, as he's not just bringing up how Gen Z has brought about a huge change in the manner in which things are now being seen and perceived, but he's also said that the youth must express their voice freely. Rahul Gandhi raking up the Paper League, and he has not just expressed on the irregularities that have surfaced in the system so far, but he's saying that this is the youth that must speak for themselves, and data and youth has now become an equivalent of how the economy will grow in the 21st century.

0: झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो जीएसएससी डीजीटी हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, या फिर जितना भी एग्जामिनेशन है, सब में करप्शन का केसेस आते हैं। तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं। ये तो अभी हाईलाइट में, नेशनल मीडिया में अभी हाईलाइट में आया, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे फोर्सफुली लाठीचार्ज के थ्रू या किसी और अदर फोर्सफुली उन्हें दबा दिया गया। अब क्या हुआ ना कि अभी आप जो यहाँ पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो सिर्फ किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं है, जितने एग्जाम्स में करप्शन हुए हैं
1: सभी के लिए आए,
0: सभी के लिए। मीन अब
1: आप क्यों आए?
0: इसलिए कि जितने बार भी जेपीएससी होता है, टाइम पे नहीं होता, उसे उस एग्जाम को, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हर साल होना चाहिए और कोई एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। यूपीएससी भी कंडक्ट एग्जाम करवाती है। आपने कभी सुना है कि यूपीएससी में किसी ने एलिगेशन लगाया है या कोई करप्शन के चार्जेस हो या करप्शन के केसेस हो? तो हम उसी तरह सेम स्टेट में चाहते हैं।
1: इस बार जब एग्जाम दिया था आप कह रहे थे कोई फोन आया था?
0: हाँ, अक्सर सिर्फ मेरे पास नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट जो टीचर का वैकेंसी फॉर्म भरते हैं, तो सपोज कि अगर मैं डेटा, जब मैं फॉर्म भरने टाइम डेटा मैं भरता हूँ, तो वो तो सिर्फ कमीशन के पास होना चाहिए, वो तो किसी पब्लिक फिगर में जाना नहीं चाहिए। बट पता नहीं बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, इवन जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और जो मेंस लिखते हैं, तो उनको कॉल आता है कि आप अगर इस सब्जेक्ट में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए।
1: कितना पैसा?
0: गई 3 लाख 4 लाख अलग अलग डिमांड्स आते हैं। इससे पहले भी अगर आप न्यूज में देखे होंगे, झारखंड के लोकल न्यूज में इसे कवर करा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि डाटा लीक कहाँ से हो रहा है? कमीशन के कोई लोग अंदर से है जो डाटा लीक कर रहे हैं?
2: Protesters, some of them on hunger strike are sitting. What's interesting is they've told me I can take out my chappals only at my own risk. कहाँ छुपाएंगे?
3: इसके अंदर छुपा लीजिए।
2: अब तो बता भी दिया, अगर घूम गया ना मैं आपका चप्पल लेके जाऊंगी वापस।
3: चोरी हो चुका है।
2: आपका चोरी हो चुका है। अच्छा,
1: आपने क्यों चूज किया कि आप अनशन पे बैठेंगे?
4: जी देखिए, हम लोगों ने सारी कोशिशें करके देख ली, सरकार तक बात मनवाने की, जो भी शांतिपूर्वक ढंग से हो सकता था हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ संविधान के दायरे में रह करके कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला, हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस भी निकाला और सरकार तक कहीं ना कहीं बातों को हम लोगों ने पहुंचाने का कोशिश किया कि यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं वो आक्रोशित हैं और वो यहाँ पे पीड़ित हैं अपने हक को लेकर के, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर दी।
1: आप पर्सनली क्यों जुड़ी हैं? आप कितने एग्जाम्स में? आप
4: देखिए, मैं 2017 से एग्जाम देती आ रही हूँ। जेएससी का पहले मैं एग्जाम देती थी, 7 सालों से मैं जेपीएससी का एग्जाम दे रही हूँ। जेपीएससी के साथ पिछले 7 सालों से मैं लॉयल हूँ, लेकिन जेपीएससी कभी मेरे साथ लॉयल नहीं रहा। हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे धांधलियाँ, पेपर लीक, ये वो होता रहा है, जिसके वजह से किसी भी बच्चे के यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। मैं 14th जेपीएससी का बात करूँ तो यहाँ पे 103 में से 90 सीट ऐसे ही बेच दिए गए हैं, तो कहाँ पे किसी जेन्युइन स्टूडेंट का यहाँ पे जॉब हो पाएगा? एक बच्चा अगर 32 क्वेश्चन कलर करके आता है वो पास आउट हो जाता है, 48 क्वेश्चन कलर करने वाले पास आउट हो जा रहे हैं। हम लोग 142 करके आए हैं लेकिन हम लोग पास आउट नहीं हो पा रहे हैं।
1: आप मैम क्यों खड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्यों अनशन पे?
5: मैं 2019 से जेएसएससी और जेपीएससी का तैयारी कर रही हूँ और जो जिस तरह जेपीएससी और जेएसएससी में धांधलियाँ हो जा रही है, इस वही रीजन है कि हम लोग को रिजल्ट नहीं हो।

0: पा रहा है। हम लोग 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल 8 साल 10 साल से भी तैयारी कर रहा है बहुत कोई, उन लोग का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। जो बच्चा रात दिन पढ़ाई कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, जो रात एक रात नेपाल में ले जाके रटाया जाता है उस बच्चा का रिजल्ट हो जाता है। तो हम लोग का अंदर से छला जा रहा है, वो तो हो गया, फिर जो अंदर से जो ओमार सीट है उसको अंदर से रंगा जाता है, उससे हम लोग को बहुत प्रभावित होता है। हम लोग जेन्युइन बच्चा है उनका रिजल्ट नहीं हो पाता, जो अंदर से रंगा जाता है उसका रिजल्ट हो जाता है। ये तो हम लोग के साथ गलत ना हो रहा है। अगर आज हम अपने लिए लड़ाई नहीं करें तो क्या मेरा आगे आने वाला जनरेशन के लिए कुछ बचेगा? पूरा अंदर से खोखला कर दिया जाएगा। इस झारखंड में इतनी धांधलियां चल रही है कि हम लोग छात्रों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अंदर से एकदम वैकेंसियों को बेची जा रही है, एकदम उसका एक फिक्स रेट हो जा रहा है। ऐसे बताया जाता है कि इस पोस्ट के लिए इतना रेट है, इस पोस्ट के लिए इतना है। आप जिससे मिलिएगा वही आपकी सेटिंग करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
1: संविधान की कॉपी अपने पास आप रखी हुई है, अंबेडकर का फोटो है, क्या सोच के संविधान का कॉपी पकड़ा है?
2: जी अभी हमारी ताकत जो है ना, संविधान ही हमारी ताकत है। यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ये हक हमें संविधान ने ही दिया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत ऐसे तत्व थे जो हमें तोड़ने की बहुत कोशिश किए, हमारे मनोबल को कम करने की ये लोग कोशिश किए, लेकिन हम लोग टूटे नहीं। और अभी जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमें आर्टिकल 91 का ए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, जिसकी वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ यहाँ पे आके। और आर्टिकल 91 का बी भी हमें शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे सम्मेलन करने की इजाजत देती है। तो बस उसी के सहारे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। चाहे प्रशासन आके हमें मारे पीटे भगाने की कोशिश करे, तो मैं डटी रहूंगी क्योंकि ये हक मुझे संविधान ने दिया है।
1: What you will see here is subtle references of Ambedkar, the Constitution. Earlier on, you'd always seen Baba Saheb Ambedkar being conjoined with Dalit assertion. And as at least I have seen, and I have covered now the Jantar Mantar protest and the protest here, you can see a marked difference as well, because now it's not just Dalit assertion. Baba Saheb Ambedkar is also now seen as the guiding light where India's constitution is concerned, the reason with which many of these young students are picking up his picture with a copy of the constitution. Sir, aapka naam?
3: Rahul Kranti.
1: Rahul, aap is kranti se kyun jude hain?
3: Raj ka bhavishya ka sauda ho raha hai, पैसे से तोला जा रहा है उनका भविष्य। हम 20 साल से परीक्षा का तैयारी करते हैं।
1: कितने साल से करी है?
3: 20 साल से कर रहे हैं, मेरा 39 साल हो गया एज। मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा क्वालिफाई किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक नंबर लाया, इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं होता है। सहायक आचार्य का परीक्षा लिखा, उसमें भी क्वालिफाई हूँ, आपके कैमरे में भी मैं दिखा सकता हूँ, इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं होता है, जबकि 14,000 सीट खाली रहता है। 26,000 एक पद पर बहाली निकलता है, तो उसको विज्ञापन एक बार हुआ, परीक्षा एक बार हुआ, तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए, नियुक्ति एक बार होना चाहिए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ सभी नियुक्तियाँ बटते हैं। 5 बार नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य का बट गया, लेकिन अभी तक 26,000 एक पद पूरा नहीं हुआ। ये भी पूरी तरह से सौदा करते हैं, जितना सीट बिक्री होता है उतना सीट पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते हैं, और जितने लोगों से पैसा लिए होते हैं उतना को नियुक्ति पत्र देते हैं। पूरी तरह से विक्रेता मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब ऐसे विक्रेता मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। जेपीएससी मैंने लास्ट अटेम्प्ट इस बार मैंने ट्राई किया, लास्ट मेरा चांस था, और इसमें वो पेपर नहीं लिख हुआ, ओएमआर लिख गया, तो क्रांति करना तो मेरा मजबूरी हो गया। मेरा सारा जवानी को इन्होंने खत्म कर दिया, मैंने पूरे जवानी को पढ़ने में लगाया, और मैंने सोचा था कि पढ़ लिख करके देश का एक सेवा करूंगा, चाहे जिस रूप जिस क्षेत्र में मेरे को सेवा का मौका मिलेगा। मेरा सपना चूर चूर हो गया है। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम संवेदनशील हैं, 3 किलोमीटर हमारे प्रदर्शन स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, लोग दिल्ली से चल करके आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील बोलने वाले मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने नहीं आते हैं। कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजते हैं तो कैसी संवेदना।
1: कितना साल आपने लगाया है इसमें?
3: पूरे 20 साल मैं बोलता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन समाप्त हुआ, फिर पीजी किया, पीजी के बाद बीएड किया, 11 में मैं बीएड कर कंप्लीट कर लिया था और उस समय से मैं लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कहीं सब माननीय मुख्यमंत्री के गलत नीति के वजह से कहीं सफलता नहीं हासिल लग रहा है। मैं सहायक आचार्य क्वालिफाई हूँ, हाई स्कूल टीचर क्वालिफाई हूँ, इसके बावजूद भी मुझे नियुक्ति नहीं मिला। इस बार जेपीएससी में बैठा था, इससे पहले सीजीएल में बैठा था, सीजीएल परीक्षा में, जिसमें अभय तिवारी बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वजह कि सीट तो पहले ही बिक गया था। अभय तिवारी जैसे हजारों दलाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पाल बैठे हैं कि जेपीएससी जैसे संस्था में कोई भी सरकार के रिश्तेदार या सत्ता पक्ष के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए मेंबर, लेकिन ये अपने प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के पत्नी अजिता भट्टाचार्य को प्रवक्ता रखे हैं। हमको तो कहीं शक लग रहा है कि कहीं अपने प्रवक्ता अजिता भट्टाचार्य जो उनके प्रवक्ता की पत्नी है उन्हीं के माध्यम से OMR बाहर निकलवा करके और बेचने का काम किया गया है, सौदा किया गया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेपीएससी जैसे कमीशन से एक कागज के टुकड़ा भी निकालना होता है तो अध्यक्ष की सहमति होती है, इसके बाद ही एक कागज का रद्दी टुकड़ा भी निकलता है, तो OMR बाहर कैसे आया। मैं सीधा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ, सीधा आरोप लगाता हूँ कि सरकार की संलिप्तता, एजेंसी की संलिप्तता, आयोग की संलिप्तता के बाद इस तरह का कांड हुआ है। पेपर लीक का काम, OMR लीक का कांड और टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति बांटने का कांड। और इस संबंध में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब दिल्ली में नीट का पेपर लीक हुआ था, पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री के आवास घेरने पहुंच गए थे, लेकिन यहां झारखंड में हालचाल भी पूछने नहीं आ रहे हैं।
1: There are scenes that will remind you of Jantar Mantar here. I am at the protest site at the Jaipal Singh Munda Stadium, and with what we saw at Jantar Mantar as well, you have people coming in and trying to pitch in whatever way that they can where the protest is concerned. Well, we have all these Sikh gentlemen who've come here giving out Kesar Doodh at night, trying to fuel the protest in more ways than just what they are demanding. Sir, aap yahan par kahan se aaye hain aur kyun aaye hain?
4: Hum yahi Jharkhand se hi hain.
1: Jharkhand se hi hain. Aur aaj ye kesar doodh jo aap yahan pe bachchon ko, jo students hain unko de rahe hain, kis usse de rahe hain?
4: Hum as in seva de rahe hain bachchon ke liye yahan pe.
1: Aaj seva de rahe hain.
4: Seva.
1: Are you with them on their cause?
4: Bilkul. Hum unke saath hi hain, tabhi hum yahan aaj khade hain unke liye.
1: Unke liye, bachchon ke liye khade hain. Their demands are justified.
4: Bilkul.
5: We want to be in the right side of the history.
1: Want to be
5: in the right side of history.
1: What happened in Jantar Mantar was the right side of history.
5: Everything is a right side. Sab protest logo ke hit ke liye hai aur jo bhi protest ho raha hai wo sab logo ke hit ke liye ho raha hai. Sab koi apne liye lad rahe hain aur jo lad rahe hain hum unke saath hain.
1: So you want to be counted for?
4: Bilkul.
1: Aapka naam batao.
6: Mera naam Ashok Kumar Lav hai aur ye mera 11 to 13 JPSC ka mark sheet hai ma'am. जितना कटअप चाहिए उसके बराबर अंक है मेरे, 653 नंबर। इसके बावजूद मैम ये मार्क्स है और मैं आपको कटअप दिखाता हूँ। ये कटअप देखिए जनरल का 652 है, बट इसमें हाइट चाहिए। लेकिन जो एक्साइज सर्विस है इसमें हाइट नहीं चाहिए, कोऑपरेटिव सर्विस है, इन दोनों के लिए मैं एलिजिबल हूँ। फिर भी मुझे कोई पोस्ट नहीं मिला।
1: क्यों नहीं मिला?
6: कारण ही नहीं बता रहे। मैंने इसके लिए सचिव से मिलना चाहा, मेल किया उनको, लिखित आवेदन दिया, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है, और फिर मैंने RTI भी किया, उसके बाद अपील भी किया, उसके बावजूद कोई रिप्लाई नहीं। इसके लिए फिर हम लोग हाईकोर्ट गए, वहाँ से हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनका कारण बताओ, नहीं तो आप जो है सो ये बताओ। हमने एक RTI किया कि मुझे डाउट था, चूंकि जो मार्क्स है मेरा उसमें मार्क्स भी एडजस्टेड बिक रहा था, चूंकि ये जो मार्क्स है वो मेरे एग्जाम के अनुसार कम थे, तो उसके लिए मैंने बोला मेरे पेपर दिखा दो, जो कि नियम है SOP में है कि इनको जो यदि कोई देखना चाहे तो अपना मेंस में मार्क्स देख सकता है, कॉपी ही नहीं दिखा रहे। 2 साल से ऊपर हो गया।
1: इतना? 2 साल?
6: 2 साल से ऊपर हो गया मैम। 22, 23, 24 जून 2024 को हमारा मेंस हुआ था। और मैम ये क्या देख रहा हूँ कि हम लोग आते हैं, हमारा मातृभाषा खोरठा है, मैं यहाँ का मूलवासी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो मार्किंग है मैम 80 से 90 नंबर में सबको फिक्स कर दिया जा रहा है। खोरठा में जो मार्क्स है, खोरठा में जो मार्क्स है मैम 80 से 90 मार्क्स दिया जा रहा है, और जो अदर स्टेट्स हैं पूर्वी दिल्ली उधर के जो लोग हैं उनका मार्क्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये रैंक के साथ दिखा रहा हूँ, रैंक 11 है और इसमें जो है सो 7 है एडमिनिस्ट्रेटिव में। सुश्री सेजल सहरावत, इनको मैम 117 मार्क्स, अदर स्टेट्स हैं यहाँ के जो रीजनल पेपर है उसमें 117 नंबर, 120 नंबर, 25 नंबर, यहाँ के जो लोग हैं उनको 80 मिल रहा है, 90 मिल रहा है, और ये एक एग्जांपल है, और ऐसे ऐसे लगभग 25 लोग हैं
7: जो आपने इसमें देखा।
6: हाँ, इसमें इसमें पति पत्नी दोनों दिल्ली के लोगों का सिलेक्शन है, मैं रैंक के साथ दिखाता हूँ, एक देखिए ये 43 है सुश्री शालिनी राठी, इनका जो देखिए पूर्वी दिल्ली से, ये वाइफ हैं, इनके हस्बैंड हैं 53 श्री विवेक कुमार, पति पत्नी दोनों सिलेक्टेड है टॉप रैंक से, और सारे के रीजनल पेपर्स में हम लोग से अधिक मार्क्स, रीजनल पेपर्स में हम लोग से अधिक मार्क्स, और हम लोग जो ये इतना नंबर लाने के बावजूद भी उससे बाहर है, कॉपी भी जैसे तैसे जांच हुई, एक है कि हम लोग ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है लेकिन कॉपी चेक करवा दिया गया जो 12th लेवल के टीचर है उनसे, किसी को कुछ भी मार्क्स दे दिया और अभी तक पेपर दिखा ही नहीं रहे, बोले हमारा तो संवैधानिक अधिकार है दिखाइए, जानना चाह रहे हैं बट कोई जवाब ही नहीं आता उधर से।
1: आपने अपना कितना साल दिया है इससे?
6: मैं सीरियसली 2018 से कर रहा हूँ, 7 जेपीएससी में भी मैंने करा था, उसमें भी इसी तरह इन लोगों ने 60 नंबर बैठा दिया रीजनल पेपर में हमारा, उसके बाद उसमें भी इंटरव्यू दिया था मैंने, और इसके बाद 11-13 जो जेपीएससी हो रहा, एक तो साल साल में होता नहीं मैम, 2-3 साल इसी तरह हर बार फंसता जाता है, एक आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद मेंस के लिए आंदोलन करते हैं लोग, आ जाता है रिजल्ट उसमें अनियमितता दिखता है उसके लिए फिर आंदोलन करते हैं, और इस तरह से 2-3 साल जेपीएससी फंस जाता है। इस बार भी 14 जेपीएससी हुआ, उसमें भी मेरा पीटी हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, मैं जानता था कि मैं केवल इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, मतलब इंटरव्यू देने के लिए बना हूँ, इंटरव्यू दूंगा उसमें मार्क्स मुझे अच्छे मिलेंगे, हाँ थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए लोगों को बता देंगे कि हाँ कि अच्छा फील हो जाएगा, हाँ पढ़ रहा है लेकिन लग रहा है कि जेन्युइन हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, कि स्थिति इतनी खराब है हमारी, एक एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जी एकदम जो ठेठ देहात कहते हैं वहाँ से आते हैं, और बस एक गलती कर दी हम कि हमको झारखंड का एग्जाम, मतलब कि हम झारखंड का एग्जाम देंगे,
1: जबकि मैं क्वालिफाइड तो है
6: नहीं,
1: आप कह रहे हैं आप ग्रामीण से आते हैं पर क्वालिफाइड तो हैं आप,
6: लेकिन पता नहीं मैम वो जो अलग योग्यता चाहिए यहाँ पे मैम जो मैं नहीं दे पा रहा,
1: स्थिति ठीक नहीं है,
6: बहुत खराब है मैम, बहुत खराब है, हम लोग है ना कमरे से बाहर कभी निकलते नहीं थे, मीडिया के सामने तो कभी आते ही नहीं थे, आंदोलन तो डर लगता था कि ये पॉलिटिक्स होता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देख रहे हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा ना, तब बोले कि आ ही जाते हैं, ऐसे भी कुछ होना नहीं है, देख लेते हैं एक बार ये भी रास्ता अपना करके,
1: इसीलिए
6: और कोई पर्पज नहीं है, तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में हम कितना हियरिंग के लिए 25,000-20,000 कहाँ से पैसे दें मैम, मैं अभी दुकान में काम कर रहा हूँ, कपड़े की दुकान में काम कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है मैडम, कॉलेज में मैं टॉपर रहता था, मेरे सारे दोस्त ना MNC में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे से ना मैं सबसे कट गया हूँ, सोशल मीडिया से कट गया हूँ, क्या मैं बताऊँ क्योंकि मैं कपड़े की दुकान में काम कर रहा हूँ, कॉलेज टॉप कर करके इंटरव्यू दे दे करके जस्टिफाई नहीं कर पाता, मेरे भैया ने दुकान खोल दिया कि चलो कहीं ज्यादा डिप्रेशन में ना रहो कि कहीं इंगेज रहोगे, कर ही नहीं पाता जस्टिफाई, बार बार लगता है कि मैं मतलब ये आ जाता है, रोना आ जाता है, और एक देहात क्षेत्र से ना मतलब लोग ना पहले एग्जांपल देते, देखो उनका बच्चा है वहाँ पढ़ रहा है ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, 8-10 साल लोग देख लिए ना अपने बच्चों को बाहर भेजने नहीं लगे पढ़ने के लिए, कहते क्या कर लोगे पढ़ के, वो तो उतना पढ़ाया क्या कर लिया, कपड़ा दुकान में बैठा हुआ है, बस एक रहता ना कसक रह जाता है मैम कि हम जो मौका मिला ना हम दूसरे बच्चों को दे, इसलिए बस लगे रहते हैं एक होप में कोई नहीं इस बार भी होगा इस बार भी देंगे, और किसी तरह एक बार हो जाए यदि तो हम जो आने वाला पीढ़ी है उनके अधिकार को न मार दें, उनके साथ अन्याय हो जा रहा है मेरे कारण, ये सिर्फ मेरे साथ साथ अन्याय नहीं हो रहा है, पूरा मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना आसपास के क्षेत्र में सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जा रहा है, नहीं पढ़ा रहे लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, मेरे उम्र के लोग जिनके बाल बच्चे हो गए 30-35 हज़ार बाहर जाके ट्रांसमिशन लाइन में जाके कमा ले रहे हैं, और वो हम पे भी ताना मारते हैं कि तुम क्या किया 15-20 लाख खर्चा कर दिया इंजीनियरिंग में कर दिया 3-4 साल दिल्ली में रहे तैयारी में कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आता हम गलती किए कहाँ, क्या झारखंड का एग्जाम सेलेक्ट करके कि चलो अपना मातृभूमि है यही सेवा करेंगे।
7: सत्येंद्र क्यों आए हैं, इस पोस्टर के साथ क्यों आए हैं?
8: मैम, जैसा कि शिबू सोरेन जी को झारखंड निर्माता जाना जाता है, उनके कुछ सपने थे झारखंड को लेकर के, उनके कुछ एस्पिरेशंस थे झारखंड को लेकर के, उन सपनों पे उनके पुत्र और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पानी फेरने का काम किया है। तो एज अ सन और एज अ सीएम ही फेल्ड शिबू सोरेन जी, तो उसी के लिए एक जो मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर का फेमस डायलॉग बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कि पोस्टर मैंने ये बनाया है कि शिबू सोरेन जी की दिवंगत आत्मा अपने पुत्र से कह रही है बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
7: आपने कितनी कोशिश की, कितने एग्जाम दिए?
8: मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लास्ट 11th टू 13th जेपीएससी मैं क्वालिफाई किया था, मेंस अपियर हुआ था, अभी इस बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, मेंस अपियर होने वाला था, बट तब तक पता चलता है सीटें बेची जा चुकी थी।
7: कितना इन्वेस्ट किया है अपने?
8: इन्वेस्टमेंट मैम मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है मैम, और ये केवल मेरी नहीं पूरे झारखंड की जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट की है इन्वेस्टमेंट है, सभी इन्वेस्टमेंट पे पानी फेर गया है मैम। लोग हताश हैं, निराश हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं पूरे छात्र, लोग लाइब्रेरी छोड़ करके सड़क पे भी आए हैं, भरी बारिश में आप देख रही हैं, वर्ड्स नहीं है मैम।
9: शिबू सोरेन अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे,
10: पूरा जेपीएससी और जेएससी सिस्टम पूरा ऊपर से नीचे उसमें दीमक लग गया है, उसमें सर्जिकल ऑपरेशन का जरूरत है आज।
7: आपने कितना अटेम्प्ट किया है?
10: ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है।
7: प्रिलिमिनरी क्लियर किया है?
10: हाँ, इस बार मैंने पीटी क्लियर किया हुआ है।
7: क्लियर किया हुआ है पर विश्वास नहीं है?
10: विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, पिछले बार हमने देख लिया है इसका जो रवैया रहती है यहाँ की सरकार का।
11: सभी मेंबर जो है जेपीएससी के अंदर वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं। मैं भी पिछले बार इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार प्रीलिम्स एग्जाम मेरा भी हुआ था, मैं मेंस देने वाला था। अब सोचिए,
7: नाम नहीं आया?
11: नहीं, प्रीलिम्स में तो मेरा नाम आया, मैं मेंस देने वाला था, अब मेंस ही नहीं हुआ। ओ एम आर एक जो सबसे ट्रिगर पॉइंट था, एक ओ एम आर रिलीज होना, वो 14 जेपीएससी कुछ नहीं है, जितने बड़े लेवल का धांधली इससे पिछले जेपीएससी में हुआ है, 342 सीट था और उसमें बहुत मास लेवल पे धांधली हुआ है। यहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होता है खोटा, तो खोटा में हम लोग खोटा वासी हैं, बचपन से ही खोटा बोलते हैं, लेकिन हम लोग का मार्क्स मात्र 80 नंबर, 75 नंबर, 90 नंबर के सीमित हो गया, बट जो हरियाणा से वाले लोग हैं उनका 117 नंबर, 120 नंबर
7: लोकल रीजनल में,
11: जबकि उनके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोग के ही दोस्त हैं, उनके मतलब रूममेट भी बने हैं ट्रेनिंग सेंटर में, उन लोग बता रहे हैं कि इन लोग एक पेज खोटा नहीं लिख पाएगा, और उन लोग अच्छा अच्छा रैंक लाके, जिससे आप सुने होंगे 40 रैंक रवि कुमार का नाम, जो पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है, वो मास्टरमाइंड था किसी सिंडिकेट गैंग का। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई लोग कैसे किए?
12: ये वैकेंसी आया ही नहीं, और मेरे पिताजी तो चले गए, बट ये सपना सपना ही रह गया। अभी हमारा मतलब कि ऐसा है कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे।
7: अभी कितना एज हो गया
12: मैम? मेरा अभी 28 हो गया मैम, तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं है, ब्लैंक हो गया सब कुछ। और अभी क्या ही मैं बताऊं, जेपीएससी जेएसएससी सब में धांधली है कम्प्लीटली, छोटा से छोटा पोस्ट भी यहाँ पे पता चलता है कि सोल्ड आउट हो जाता है, कि अभी जो है 30 साल तक का उसका रहता है, 21 से 30, क्योंकि जनरल का कैटेगरी वही रहता है। ओबीसी में 2-3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ओबीसी में क्रीमिलेयर बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे उसमें होते हैं। तो मैम अब 2 साल के बाद मैं एलिजिबल भी नहीं रहूंगा, बताइए। मतलब एक मतलब पूरा का पूरा एक आदमी का एज निकल गया, लेकिन वैकेंसी तक नहीं आ रही है, और उसमें भी सरकार जो आश्वासन देती है कि अब आएगा अब आएगा, और बम्पर भर्तियां आ रही है, कहाँ है मैम, कहाँ है, कुछ दिखता नहीं है। हम लोग मतलब परेशान हताश इस प्रकार से है ना, प्रताड़ित इस कदर से हो गए कि रात रात में हम लोग को तिरपाल भी ऐसे लेकर के खड़ा होना पड़ रहा है ना, तो हम लोग रह रहे हैं, पूरा भीगा हुआ हूँ मैम अभी, बट क्या करूँ, हम लोगों के पास कोई होप नहीं, होप यही है कि लड़ना है, कि झारखंड में जल है, जीवन है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, टूरिस्ट प्लेस है, मंदिर है, सब चीज है मैम, लेकिन झारखंड सरकार में आज कुछ किसी चीज का कमी है, तो वो है विजनरी लीडर, जो हम लोगों के पास नहीं है।
13: 2016 के बाद आज तक झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ, जिससे कि इस राज्य में शिक्षक बन पाएंगे, अभी तक नहीं हुआ। आप समझिए कि जो इंसान 2016 में बीएड किया होगा एक भरोसे एक उम्मीद एक विश्वास के साथ में कि हम राज्य में शिक्षक बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे, आज 2026 होने वाला है, कहीं ना कहीं उसका एज 32-33 साल होने वाला है, सिर्फ एक उम्मीद में कि हम राज्य में शिक्षक बनकर राज्य की सेवा करेंगे। और जब भर्ती निकलती है ना मैम, तो जो 2016 में जो जेटेड पास थे उसके लिए 2024 की वैकेंसी जब आई थी सहायक आचार्य की वैकेंसी 2023 में, तो सबसे पहले उसमें सीटेट और जेटेड दोनों के लिए मैंने था, जैसे मान लीजिए जेटेड परीक्षा नहीं ले रही तो ये तो है कि जो सीटेट पास है तो एलिजिबल हो सकता है। सीटेट हम लोग पास थे, हम लोग फॉर्म भी भरे थे, एग्जाम भी दिए, रिजल्ट भी आया, लेकिन सरकार अचानक क्या बोलती है कि नहीं जो जेटेड पास है 2016 में, जो 2016 में जेटेड पास है वो, और फिर हम लोग बाहर निकाल जाते, हम लोग बाहर निकल जाते हैं। अब समझिए इतना खराब चुकी है, मतलब जो झारखंड की जो व्यवस्था है ना मैम, आप समझिए 2016 के बाद 2017 के बाद दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, 2015 के बाद झारखंड पुलिस का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद पंचायत सचिव का वैकेंसी नहीं आया। आप समझिए कि जो इस राज्य में जो पैदा होता है, जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, उसका एक उम्मीद एक विश्वास एक भरोसा होता होगा कि इस राज्य में हम अपना बेटा बेटी को पढ़ाकर इस राज्य की में सेवा कराएं, सरकारी नौकरी लेकर राज्य की सेवा करेगा। मैम यहाँ के बच्चों के सपने और उनके माँ बाप के सपने को कुचला जाता है, सरेआम कुचला जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी और मार्क खाली हो जाता है, और इसी तरह सब खत्म हो जाता है। मैम
1: Jantar Mantar today is the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi, Jharkhand. Tomorrow, this will be a theater in some other state. It's not about governance. It's the youngster field. And this should be a wake-up call for everyone because it's not stemming. It's out in the streets. It's in solidarity. It's in protest. And they are up in arms. They want answers. They want systematic changes. And we have to listen. Otherwise, they will make us listen. This is not stopping anytime soon. Reporting with camera person Pawan Kumar, Preeti Chaudhary in Ranchi, Jharkhand for India Today.
14: You are watching India Today.

0: your masala box could be hiding a health hazard. In one of Hyderabad's biggest anti-adulteration crackdowns, Hyderabad Food Adulteration Surveillance Team and food safety officials raided 13 spice processing units across the city. The result? Nearly 25 tons of adulterated spices seized. Three people arrested. Three criminal cases registered.
1: Last 5-6 महीने से 600 से ज्यादा रेड्स हुए हैं, 300 से ज्यादा FIR हुए हैं और इस मसले पे जो आज आपके सामने रखा गया है, इसमें जो है पॉइजनस चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जिसके रैपर्स पे भी लिखा हुआ है नॉट एडिबल एंड पॉइजनस, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने HPAS टीम ने जो है कल्पेबल होमिसाइड 110 BNS का केस भी बुक किया है.
0: The allegations are shocking. Investigators say the adulterated spices allegedly contained industrial and fabric dyes, along with talcum powder used to increase weight and improve appearance. Food safety officials warn that consuming such adulterated products could put consumers at risk of liver and kidney damage. Trigger digestive disorders and over-prolonged exposure increase the risk of cancer.
1: We abhi jo hai investigations chal rahe hain. जो जहाँ पे रेड हुआ है वो लोग B2B2 पे सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को सप्लाई करते हैं, वहाँ से फिर और कहीं कहीं छोटे बिजनेसमैन पे, वे रिटेल्स पे, फिर मार्ट पे, सब जगह जाता है. अभी हमारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जहाँ जहाँ जाता है फुल प्रूफ के साथ फिर वापस आएंगे.
0: दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस. फ्रॉम फेक पनीर टू रॉटन मीट टू केमिकली राइपेंड फ्रूट्स, the list keeps growing. In just 140 days, the Hyderabad authorities say they have conducted 659 raids, registered 202 FIRs and seized 246 tons of adulterated food. Your spices should add flavor, not chemicals.

0: और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू हेट, यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी साइलेंट। यू आर लविंग यूथ, मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।
1: झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है, शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं, या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए वोटों की फसल काटने के लिए आए थे प्रयागराज।
2: वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं, जो असंभव है। देश की जनता ने 50-60 साल उनका रूल देखा, और चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इंटरनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर चीज़ में उनका फेलोर रहा। इसीलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया और वो कभी भी वापस आने वाले नहीं।
3: And well, Congress MP Shashi Tharoor has once again put his own party in an uncomfortable spot. This time with a blunt assessment of Rahul Gandhi's outreach to young voters, Tharoor says the Chhatro Ki Goonj campaign failed to strike the same chord as the recent student protests. And his latest remark comes amid a string of occasions where Tharoor has publicly differed with the Congress line. Take a look. It is Shashi Tharoor versus Congress once again. This time, a reality check for Rahul Gandhi's Gen Z outreach. The growing disconnect between Shashi Tharoor and his party is once again in the spotlight. Tharoor admitted that Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj outreach failed to generate the kind of response seen during the recent CJP stir. He says several issues were raised, but it failed to resonate.
4: Chhatro Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
5: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
4: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z?
3: Tharoor went on to say political parties must rethink their structure and give Gen Z a meaningful role in shaping politics to avoid becoming irrelevant.
6: Yeah, I don't speak for either Gen Z or for Mr. Dipke or for his movement or anything else. I'm just speaking as an ordinary MP in the Indian Parliament who is concerned about the political direction of our country and wants to see at the same time that we are responding to the needs of the majority of our young people for meaningful change that will improve their life prospects. That is my message.
7: Not say the words.
3: Congress, however, maintained that

0: are watching India Today.
1: And well, as Netas continue their Gen Z outreach, Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi held his Chhatro Ki Goonj event in Prayagraj. Rahul Gandhi put youth and jobs at the center of his pitch, calling youth the country's strength. Rahul Gandhi said that degrees do not guarantee jobs, alleging that the system is trapping youth's potential. The BJP has slammed Rahul Gandhi, asking why he found time for Prayagraj but did not visit Ranchi to meet protesting JPSC, JSSC aspirants. BJP has also accused Rahul Gandhi of double standards, saying that the Congress should withdraw support from the Jharkhand government.
2: जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। यू

0: लविंग यूथ, मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।
1: झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं? आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दुमुही नीति है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए वोटों की फसल काटने के लिए आए थे प्रयागराज।
2: वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं, जो असंभव है। देश की जनता ने 50-60 साल उनका रूल देखा, और चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इंटरनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लैंड आर्डर की बात हो, हर चीज़ में उनका फेलोर रहा। इसीलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया और वो कभी भी वापस आने वाले नहीं।
3: And well, Congress MP Shashi Tharoor has once again put his own party in an uncomfortable spot. This time with a blunt assessment of Rahul Gandhi's outreach to young voters, Tharoor says the Chhatro Ki Goonj campaign failed to strike the same chord as the recent student protests. And his latest remark comes amid a string of occasions where Tharoor has publicly differed with the Congress line. Take a look. It is Shashi Tharoor versus Congress once again. This time, a reality check for Rahul Gandhi's Gen Z outreach. The growing disconnect between Shashi Tharoor and his party is once again in the spotlight. Tharoor admitted that Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj outreach failed to generate the kind of response seen during the recent CJP stir. He says several issues were raised, but it failed to resonate.
4: The Chhatro Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
5: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
4: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z?
3: Tharoor went on to say political parties must rethink their structure and give Gen Z a meaningful role in shaping politics to avoid becoming irrelevant.
6: I don't speak for either Gen Z or for Mr. Dipke or for his movement or anything else. I'm just speaking as an ordinary MP in the Indian Parliament who's concerned about the political direction of our country and wants to see at the same time that we are responding to the needs of the majority of our young people for meaningful change that will improve their life prospects. That is my message.
7: Not say the words.
3: Congress, however, maintained that Rahul Gandhi is the only national leader who raised the students' views. Several Congress leaders have come out in defense of Rahul Gandhi, saying his campaign has been a big hit.
8: तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई राष्ट्रीय राजनेता युवाओं की आवाज को उठा रहा है और युवा उससे अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहे हैं, तो वो राहुल गांधी है। मेरे ये विचार हैं। मैं नहीं जानता कौन और क्या कह रहा है।
9: आप छात्रों से पूछो ना, कितना गजब का उत्साह है, इतना जबरदस्त उत्साह छात्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे इम्पैक्ट का पता लगता है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे देश में जांजा भाजपा का शासन है और केंद्र की सरकार घबरा गई है। मोदी जी, अमित शाह जी इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि राहुल गांधी की आंख में आंख मिला के संसद में जवाब दे सके। इससे पता लगता है कितना इंपैक्ट है।
3: But this is not the first time Tharoor has swayed from the party's stand. The differences came into sharp focus during the political fallout over Pehelgam and Operation Sindoor.

0: आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी, दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू हेट, यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी वायलेंट। यू आर लविंग यूथ, मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।
1: झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है, शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं, या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए वोटों की फसल काटने के लिए आए थे प्रयागराज।
2: वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं, जो असंभव है। देश की जनता ने 50-60 साल उनका रूल देखा, और चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इंटरनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर चीज़ में उनका फेलोर रहा। इसीलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया और वो कभी भी वापस आने वाले नहीं।
3: And well, Congress MP Shashi Tharoor has once again put his own party in an uncomfortable spot. This time with a blunt assessment of Rahul Gandhi's outreach to young voters, Tharoor says the Chhatro Ki Goonj campaign failed to strike the same chord as the recent student protests. And his latest remark comes amid a string of occasions where Tharoor has publicly differed with the Congress line. Take a look. It is Shashi Tharoor versus Congress once again. This time, a reality check for Rahul Gandhi's Gen Z outreach. The growing disconnect between Shashi Tharoor and his party is once again in the spotlight. Tharoor admitted that Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj outreach failed to generate the kind of response seen during the recent CJP stir. He says several issues were raised, but it failed to resonate.
4: Chhatron ki goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
5: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
4: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z?
3: Tharoor went on to say political parties must rethink their structure and give Gen Z a meaningful role in shaping politics to avoid becoming irrelevant.
6: Yeah, I don't speak for either Gen Z or for Mr. Dipke or for his movement or anything else. I'm just speaking as an ordinary MP in the Indian Parliament who is concerned about the political direction of our country and wants to see at the same time that we are responding to the needs of the majority of our young people for meaningful change that will improve their life prospects. That is my message.
7: Not say the words.
3: Congress, however, maintained that Rahul Gandhi is the only national leader who raised the students' views. Several Congress leaders have come out in defense of Rahul Gandhi, saying his campaign has been a big hit.
8: तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई राष्ट्रीय

0: आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है, 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू हेट, यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी वायलेंट। यू आर लविंग यूथ, मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।
1: झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है, शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं, या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए वोटों की फसल काटने के लिए आए थे प्रयागराज।
2: वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं, जो असंभव है। देश की जनता ने 50-60 साल उनका रूल देखा, और चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इंटरनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लैंड आर्डर की बात हो, हर चीज़ में उनका फेलोर रहा। इसीलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया और वो कभी भी वापस आने वाले नहीं।
3: And well, Congress MP Shashi Tharoor has once again put his own party in an uncomfortable spot. This time with a blunt assessment of Rahul Gandhi's outreach to young voters, Tharoor says the Chhatro Ki Goonj campaign failed to strike the same chord as the recent student protests. And his latest remark comes amid a string of occasions where Tharoor has publicly differed with the Congress line. Take a look. It is Shashi Tharoor versus Congress once again. This time, a reality check for Rahul Gandhi's Gen Z outreach. The growing disconnect between Shashi Tharoor and his party is once again in the spotlight. Tharoor admitted that Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj outreach failed to generate the kind of response seen during the recent CJP stir. He says several issues were raised, but it failed to resonate.
4: Chhatron ki goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things.
5: And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
4: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having a finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z?
3: Tharoor went on to say political parties must rethink their structure and give Gen Z a meaningful role in shaping politics to avoid becoming irrelevant.
6: Yeah, I don't speak for either Gen Z or for Mr. Dipke or for his movement or anything else. I'm just speaking as an ordinary MP in the Indian Parliament who's concerned about the political direction of our country and wants to see at the same time that we are responding to the needs of the majority of our young people for meaningful change that will improve their life prospects. That is my message.
7: Not say the words.
3: Congress, however, maintained that Rahul Gandhi is the only national leader who raised the students' views. Several Congress leaders have come out in defense of Rahul Gandhi, saying his campaign has been a big hit.
8: तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई राष्ट्रीय राजनेता युवाओं की आवाज को उठा रहा है और युवा उससे अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी है। मेरे ये विचार हैं, मैं नहीं जानता कौन और क्या कह रहा है।
9: आप छात्रों से पूछो ना, कितना गजब का उत्साह है, इतना जबरदस्त उत्साह।

0: are watching India Today.
1: And well, as Netas continue their Gen Z outreach, Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi held his Chhatron Ki Goonj event in Prayagraj. Rahul Gandhi put youth and jobs at the center of his pitch, calling youth the country's strength. Rahul Gandhi said that degrees do not guarantee jobs, alleging that the system is trapping youth's potential. The BJP has slammed Rahul Gandhi, asking why he found time for Prayagraj but did not visit Ranchi to meet protesting JPSC, JSSC aspirants. BJP has also accused Rahul Gandhi of double standards, saying that the Congress should withdraw support from the Jharkhand government.
2: जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू हेट, यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी वायलेंट। यू आर लविंग यूथ, मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ।

0: are watching India Today.
1: And well, as Netas continue their Gen Z outreach, Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi held his Chhatron Ki Goonj event in Prayagraj. Rahul Gandhi put youth and jobs at the center of his pitch, calling youth the country's strength. Rahul Gandhi said that degrees do not guarantee jobs, alleging that the system is trapping youth's potential. The BJP has slammed Rahul Gandhi, asking why he found time for Prayagraj but did not visit Ranchi to meet protesting JPSC, JSSC aspirants. BJP has also accused Rahul Gandhi of double standards, saying that the Congress should withdraw support from the Jharkhand government.
2: Jo aap mein hai. और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है. 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा. युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी. भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी. दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी. मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है. 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस. यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड. यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू हेट, यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी वायलेंट. यू आर लविंग यूथ. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है. जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है. आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ. भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है. मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में.
3: झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं? आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की. हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी